जे सत गुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन, जे सत गुर सिमरंत जी की तपत मिटावे, जे सत गुर

इस तरह मोहरा खड़िया करके बाबा टोडर मल जी ने सत्कार जोगी जगह वजीर खां तो खरीदी। उधर ठंडे बुरज के अंदर माता गुजरी बार बार वेख रही है सरहंद वल नूं। अज उहनूं पता है साहबजादियां दे मुकदमे का फैसला हो जाना है, इस करके उड़ीक रही है अज साहबजादियां नूं नहीं बाबा मुक्ति राम नूं, जिन्हां नूं पिछली रात आख्या सी ना सवेरे जो कुछ सरहंद दे अंदर वापरे कचहरी च वापरे मेरा लाल मैनू आके दस जावी। ते बाबे मोती राम ने मेहरा कीता सी, मां जो कुछ होवेगा मैं कल नू आके तेरे कोल सारी खबर दे देंगा। ता खबर बाबा मोती राम मेहरा जी सरहंद वाल नू आ रहे ने, दूरों माता वेख रही है कहिंदे मां किन्ना नू पई उडीक दी है, तेरे लाल दे लाल दलारे तुर गए, तेरे जिगर दे टुकड़े दे दो टुकड़े, तेरे नैणा दे तारे तुर गए, मां आखरी फतेह बुला गए ओ निके निके ओ शैल सरदार दोवें, ओ शहादत दे सागरों पार हो गए होके तेग दी तार सवार दोवें। मोती सच कहिंदा तुर लगे ते मैनू कहिंदे सन मां जदों दी साडी मां गुजरी है एक पल सानू वख नहीं कीता, अज साडे तो बिना तू किवें रवेंगी, ते जान लगे मैनू याद नहीं सन करदे। मोती सच कहिंदा ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਵੱਟਾ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸੱਚ ਖੂਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ

আলাহতে যুগ যুগ এ কোয়ে সংসার দি উৎপত্তি রচনা তে গর্দিশ দে সম্বন্ধে যো যোগিয়া নে জগত নু বিচার দিতে নে উস সম্বন্ধে সাহেব শ্রী গুরু নানক দেবজি মহারাজ জগত নু বিচার দে রে নে তে যোগিয়া নু সমঝা রে নে। প্রাচীন সময় তো এক কহাবত চলি আ রই হে কে মাদা প্রকৃতি যুক্তি দে নাল প্রসূত হই তে উস তো তিন শক্তিয়া নে তিন চেলিয়া নে জন্ম লিয়া। সাহেব শ্রী গুরু নানক দেব জি মহারাজ উনা দা হওয়ালা দে কে ফির আপনি বিচার জগত তে যোগিয়া দে সামনে রাখদে নে। একা মাই যুগত ব্যাই তিন চেলে পরমা যুগতি দে নাল ব্যাই প্রসূত হই এ মায়া এ মাদা এ প্রকৃতি তে ফির বনে তিন চেলে পরমাণ প্রমাণিক তিন চেলিয়াঁ দা সিরমোর তিন দেবতিয়াঁ দা জন্ম হোয়া জিনা দে নাল লকব জুড়ে কে এক সংসারী হে এক সংসার দি পালনা করন ওয়ালা হে তে এক পরলে করন ওয়ালা হে এক সংসারী এক ভণ্ডারী এক লায়ে দিবা। ইথে তক বিচার জগত দি হে যোগিয়া দি হে সংসার দি হে ওর ইস সংসার দি বিচার নু সামনে রখ কে মেরে পাতশাহ ফির আপনি বিচার আপনি খেয়াল আপনা জবাব জগত তে যোগিয়া দে সামনে রখদে নে। ইতনি গল তে স্পষ্ট হে কি যোগিয়া দি পকড় দে চ এক গল আই কি শক্তিয়া তিন হি নে তে কিরিয়া সিরফ তিন তরহ দি হো রই হে। জীব জম রহে নে, জীব টিক রহে নে, জীব মিট রহে নে। গ্রহ নক্ষত্র সূর্য চন্দ তারে বন রহে নে, টিক রহে নে, মিট রহে নে। পশু পঙ্খী জন্ম লে রহে নে, টিক রহে নে, ফির মিট রহে নে। এ নিয়ম তিন তরহ দা জন্মনা জীবনা তে মিট জানা সারিয়াঁ তে লাগু হে ওর সারিয়াঁ দি বকায়দা আপনি উমর হে। তিন চেলে পরমাণ প্রমাণিক এ তিন চেলে নে দরসল তিনা দি হি গিনতি করিবন করিবন সারে বিদ্বানা নে প্রকৃতি দে সম্বন্ধ চ কীতি হে। উনা নে প্রকৃতি দে গুণ ভি তিন মন্নে রজো তম সত। শরীর ভি তিনা দা জোড় হে মন হে ওর অস্থূল মাদা হে শরীর তে ফির আত্মা হে। এক নু ভি অলগ কর দেইয়ে তে হোঁদ কায়ম রখনি বহুত ঔখী হো জাঁদী হে। আত্মা হে মন হে শরীর হে। সময় দিয়াঁ হালতাঁ ভি তিন নে মাজী হাল মুস্তকবিল ভূত ভবিষ্য ਵਰਤਮਾਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਨੇ ਜਾਗਰਤ ਸਵਪਨ ਸਖੋਪਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਜਗਤ ਦੇ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤਿੰਨ ਨੇ ਜੀਵ ਜੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀਵ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟਿਕ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋਗੀਆਂ ਤੇ ਕੁਛ ਆਮ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਜੋ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਜਨਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਰਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਆਈ ਗੱਲ ਪਾਲਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੇ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼। ਬ੍ਰਹਮਾ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭੰਡਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਰ ਲੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਰ ਮਹਾਦੇਵ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਿਧਰੇ ਅਖੌਤੀ ਮੰਦਰ ਇੱਕ ਅੱਧ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਰਥ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਆਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਇਨ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਰਚੈਤਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਚੈਤਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਲਾ ਪੈਣਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਸਨੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਨੇ। ਪਾਲਣਾ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਧਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਫਿਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ਮੀ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਪਦਾਰਥ, ਵਸਤੂ, ਸੰਪਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਅਤਿਅੰਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਤੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ, ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨਾ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਖੂਬ ਪੂਜਾ ਹੋਈ, ਖੂਬ ਮੰਦਰ, ਕਾਫੀ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ। ਲੇਕਿਨ ਡਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ, ਭੈਭੀਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੂਜਾ ਹੋਈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਜਦੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਪੂਜਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਵਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਾਇਣ ਆਏਗਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਆਏਗੀ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਆਏਗੀ ਤੋ ਨਾਰਾਇਣ ਆਏਗਾ, ਪੂਜਨ ਚੱਲਿਆ, ਰੋਜ਼ ਪੂਜਨ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਆਵਣ। ਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਇਹ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵੇ। ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਲੇ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਤਖਈਅਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਮਸਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਉਹ ਗਲ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅੰਜਾਮ ਤੇ ਮਸਾਣ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਤ ਦੇ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨੇ। ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਅੱਗੋਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਥਾਲੇ ਦੇ ਚ। ਹਾਥੀ ਫੁਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਰਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਭਗਤ ਜਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੀਣਾ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਹਾਦੇਵ ਖਾਮੋਸ਼, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮੂੰਦ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੇਰੌਣਕੀ ਹੈ, ਤਨ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਨੇ ਆਖਿਰ ਸਵਾਹ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਾਖ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ। ਜਦ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲਿਖਾਈ ਪੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਚਲਦੀ ਸੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ।
और इस ढंग नाल मनुख नूं धार्मिक बोध भी कराया जांदा सी, संसार दा बोध भी कराया जांदा सी। सहजे सहजे तालीम पढ़न लिखण दा ते छापेखानियां दा जन्म होया तो इशारियां दी भाषा दी थां ते शब्द भाषा बोलचाल दी भाषा ने लै ली। लेकिन धार्मिक दुनिया दे ओ प्राचीन इशारे अज भी मौजूद ने। ए गल वखरी है कि समझण तो लोकी सहजे सहजे असमर्थ होंदे जा रहे ने और उन्हां नूं वास्तविक रूप दे जांदे ने, जदके वास्तविक रूप मिथिहास बन जांदा है, इतिहास नहीं हकीकत नहीं। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, आम प्राचीन जगत दी ये प्रथा है कि ए प्रकृति ए मादा युक्ति दे नाल प्रसूत होई। इस तो तीन चेले बने, ब्रह्मा विष्ण ते महेश जो प्रमाणिक ने। 33 करोड़ देवते विच ए तीन प्रमाणिक ने, सिरमौर ने। ते साहिब कहिंदे ने इक नूं संसारी होण दा लकब दे दिता गया। संसारी होण तो मुराद सिर्फ संसार दी रचना ही कीती, जो रचयिता है पालनहार नहीं है। इस ढंग नाल साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की दृष्टि च तिन्ने ही अधूरे हो जांदे ने, क्योंकि जो रचना कर सकदा है वह पालना नहीं कर सकदा, जो पालना कर रहा है वह मौत नहीं कर सकदा, और जो मौत कर रहा है वह सिरजना नहीं कर सकदा। ए तिन इक इक शक्ति। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे नहीं, हकीकत यह है जितों उत्पत्ति हो रही है पालना भी उस तों हो रही है, और जिस तों पालना हो रही है नाश भी उस तों हो रहा है। पर जे इत्थे सवाल खड़ा हो जाए कि जिस तों उत्पत्ति हो रही है मौत भी उस तों हो रही है, गल समझ विच नहीं आउंदी, क्योंकि जिहड़ा बनाएगा वह मिटाएगा क्यों, और जिन्हें मिटाना ही है वह पालना क्यों करेगा। तो इहदे वास्ते गुरबाणी का एक बड़ा सुंदर जवाब है कि यह परमात्मा का कोई मुद्दा ते मकसद नहीं है, उसका एक खेल है। शौक दे नाल दरिया दे कंडे ते बच्चे अपने घर बनांदे ने, और जितनी शौक नाल बनांदे ने, जितने हसके बनांदे ने, उतनी हसके तोड़ देंदे ने। बनाण लगियां जो हासा मौजूद है, तोड़ लगियां भी वो खिलखिलाहट मौजूद है। जिहड़ी प्रसन्नता बनाण लगियां है, तोड़न लगियां भी वही प्रसन्नता है, और जितनी लगन ते मेहनत दे नाल बनाया है उतने ही चाओ मल्हार ते लगन नाल तोड़ देता है। क्या प्रयोजन है इस बच्चे का? अगर प्रयोजन होंदा, कुछ मुद्दा होंदा, मकसद होंदा, तो तोड़न लगिया इसने रोना सी, तड़पना सी, बेजार होना सी। नहीं, ये उसका खेल है। तो साहब कहते आवन जान एक खेल बनाया, आग्याकारी कीनी माया। जगत दिच आवना ते जावना परमात्मा दा एक खेल है, मकसद नहीं। जिस काम दे पिछे कुछ मकसद रख लई है उत्थे तनाव खड़ा हो जांदा है। क्यों तनाव इस गल दा खड़ा हो जांदा है, हुण मकसद दी पूर्ति होवेगी कि नहीं, क्योंकि मकसद रखे। ते जिसने जिस काम दे लई कुछ मकसद रखे इहदा मतलब है उसने किधरे पहुंचना है, ते किधरे पहुंचना इस गल दा सबूत है जे रस्ते च है, अजे मंजिले मकसूद ते नहीं। ते परमात्मा दा भी कोई मकसद है, उसने भी किधरे पहुंचना है, ए ते फिर अधूरा हो गया, ए ते फिर अपने घर दे च नहीं है। अगर उसने भी कोई मुद्दा रखे है, मकसद रखे है, स्पष्ट गल है। जैसे जैसे मनुख जिस काम दे नाल मकसद जोड़दा है तनाव ते खड़ा हो जांदा है, हुण मकसद दी पूर्ति होवे ताई मैनू सफलता मिलेगी, ताई मैं अग्गे वध सकांगा। ते जे मकसद दी पूर्ति ना होवे ते मायूसी आउंदी है, उपरामता आउंदी है, और अजे मकसद दूर है, अजे प्रयोजन दूर है, मुद्दा मंजिल दूर है, लेकिन तनाव पहले ही खड़ा हो जांदा है कि सफलता मिलेगी कि नहीं, मैं पहुंच सकांगा कि नहीं, मेरा पहुंचना ही मेरी सफलता है। ते जे परमात्मा दा ये सब कुछ करना भी किधरे पहुंचना है, तो इतनी गल स्पष्ट होगी परमात्मा को अजे सफलता नहीं है, और वह भी दुबदा च पे है कि मैं सफल होवांगा कि नहीं। तो साहिब गुरु अर्जन देव जी कहिंदे नहीं, जगत दी रचना दे संबंध च उसका कोई मकसद नहीं, उसका कोई मुद्दा नहीं, ये उसकी एक लीला है, ये उसका एक खेल है।
आवन जान एक खेल बनाया, आग्या कारी कीनी माया। मुद्दा नहीं है उसका, कोई मकसद नहीं है, लेकिन बढ़ाई जा रहा है। इस वास्ते परमात्मा की दुनिया तनाव नहीं है, खिचाव नहीं है। वो जिथे है अपने टिकाने ते, वो जिथे है प्रसन्न है, आनंद है, खुशी दे है, खेड़े दे है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का यह बड़ा मधुर कलाम कि मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। ये जगत एक तमाशा है, ते मैं इस तमाशे नूं वेखण वास्ते आया। दरअसल जो तमाशा वेखदा है वह ते प्रसन्न रहिंदा है, पर जो तमाशा बन जांदा है वह लोकां दी नजरां च गिर जांदा है, दुखी हो जांदा है, बेजार हो जांदा है। और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे ए वाक कह रहे ने, ऐ बंदे तमाशा वेख तमाशा ना बना। कई बंदे तमाशा ही बन गए ने, उन्हां दा जीवना और रोजमर्रा दी तर्जे जिंदगी तमाशा बनी हुई है, और लोकी वेख वेख के खुश होंदे ने। जिन्हां नूं वेख वेख के दूजियां नूं प्रसन्नता मिले, समझ लो बंदा ते तमाशा बन गया, एक खेड बन गया। लड़ रहे ने घर दे च, पड़ोसियां नूं स्वाद आ रहा है, रस आ रहा है, हाथा पाई कर रहे ने, गाली गलोच कर रहे ने, एक दूजे दे केस पुट रहे ने, एक दूजे नूं जख्मी कर रहे ने। हजारां दी भीड़ कट्ठी हो गई है, तो हजारां लई तो तमाशा बन गए। साहिब कहिंदे नहीं, ऐ बंदे जगत दे जो कुछ हो रहा है ए तमाशा है, और इस तमाशे नूं तू वेखण वाला बन, ना कि तू खुद तमाशा बन। और भगत जना तो बाद कुछ दार्शनिक अजीम चिंतक जो जीवन दे गहरे तल दे झात मार सके, ए गल वखरी है कि जीवन दे गहरे तल दे जा ते नहीं सके, लेकिन झात मार सके ने। जो पहुंच गए ने जीवन दे गहरे तल दे च, वो ते संत ने, भगत ने, पर जो झात मार सके ने वो दार्शनिक ने, महान दार्शनिक। तो ए दो श्रेणियां जगत दे च महान ने, जो जीवन दे गहरे तल दे चले गए इते महान ने, पर जिन्होंने झात मार के गहरा तल वेख लिया है वो भी घट ने, वो भी महान ने। तो इस तरह दे गहराई दे झाती मारी है उर्दू दे प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब ने। वो कहिंदा है, बाजी चाहे इतफाल है दुनिया मेरे आगे, इस सारी दुनिया मानिंद तिफल एक खेल है मेरे सामने, बच्चे दा खेल, तिफल बच्चा। अजीबो गरीब जो कुछ जगत दे च हो रहा है, इस सब कुछ मेरे लिए बच्चियां दे खेल तो ज्यादा कुछ नहीं है। और फिर अगां चल के कहिंदा है, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, दिन ते रात ये तमाशा मेरे सामने हो रहा है। ये गल वक्री है कि रात दा तमाशा कुछ हो रहा है, दिन दा तमाशा कुछ हो रहा है, पर मैं देख रहा दिन दे तमाशे भी, रात दे तमाशे भी। फिर कहिंदा एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नजदीक, एक बात है अज्जाज मसीहा मेरे आगे, तख्ते सुलेमानी ए भी एक बच्चियां दा खेल है। राजनीतिक लई ये खेल नहीं है, उदा ते एक मुद्दा है, मकसद है, तख्त सुलेमानी तक पहुंचना, तख्त तक पहुंचना। वो अपनी जिंदगी भी दाते ला सकता है, सफलता ना मिली उन्हों बहुत दुख भी हो सकता है, हो सकता है कई दिन मंजे तो ही ना उठ सके, इतनी उसनु चोट पहुंचे, इतनो उसनु आघात पहुंचे, क्योंकि तख्त तक पहुंचना उसका मकसद है। पर गालिब कहने अगर मैनु कोई चुक के भी बिठा देवे तो मैं तो यह समझांगा ये भी एक बच्चियां दा खेल है, इस तो ज्यादा कुछ नहीं। ते जेदे लई तख्त सुलेमानी एक खेल है, तो उदे लई तख्त सुलेमानी जिंदगी दा मुद्दा नहीं है, मकसद नहीं है, उदा मकसद कोई होर होवेगा, ये नहीं है। तो एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नजदीक, एक बात है अजाज मसीहा मेरे आगे, अजाज मौजियां दी जमा, मौजे करामात। तो गालिब कहने हजरत ईसा दे मौजे, मौजे की
قبر تے ہتھ لایا ہے مردہ زندہ ہو گیا ہے، بیمار دے سر تے ہتھ پھیرے ہے تندرست ہو گیا ہے، اندھے دیاں اکھاں تے ہتھ رکھے ہے وہ سجاکھا ہو گیا ہے، غالب ہس کے کہندن اے وی بچیاں دے کھیل تو زیادہ کچھ نہیں، سب کچھ ایک کھیل ہے، حضرت عیسیٰ دے معجزے، تخت سلیمانی، دن رات وچ جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ ایک تماشا ہے۔

तमाशा। मैं तमाशा वेखण वास्ते आया, मैं तमाशा खुद नहीं हां। अगर वह तमाशा खुद होंदे ते जद चार बच्चे शहीद होए ते रोंदे, ते जगत ते रोंदे आया नूं वेख के हसदा, कदी रोंदे आया नूं वेख के रोंदा नहीं है। इस वास्ते आम कहावत है, तुसी हसोगे जगत नाल हसेगा, पर जब तुसी रोवोगे जगत रोण नूं तैयार नहीं होवेगा। रोने दी कौन सांझ पांदा है? हासे दी सांझ पांदा है। जीवन दी सारी सांझ पांदे ने, मौत दी कौन सांझ पावेगा? नफे दी सारी सांझ पांदे ने, नुकसान दी कौन सांझ पावेगा? सारे रिश्ते सुख दे ने, दुख दी रिश्तेदारी कौन जोड़ेगा? साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दा फैसला, सुख में बहु संगी भय, दुख में संग न कोय, कहो नानक सुन रे मना, अंत सहाई होए। हरिदा भजन कर हे मन, कहो नानक हर भज मना, अंत सहाई होए। जगत ते सुख दा संगी है, इतना वड्डा संगी है कि सुख में आन मिलत बहु बैठत, रहत चहू दिस गेरे। बहुत लंबी चौड़ी जड़ी भीड़ है तेरे आले दुआले, किधरे ए न समझ नहीं कि मेरे संगी साथी ने। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने, नहीं सब सुख दे साथी ने, और जिस दिन तू देखेगा कि तेरी झोली च सुख नहीं रहे, तू चिराग लेके भी ना संगियां साथियां नू ढूंढेगा, नहीं लभने, एक किसे पासे मिलने नहीं। सारा शोर शराबा, सारी भीड़, सारा ए वर्तन वलेवा, सारा ए संबंध सुख दाय, सुख में आन मिलत बहु बैठत, रहत चहू दिस गहरे। तो साहेब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, बच्चे शहीद हो गए, पिता शहीद हो गए, ते आप दावे नाल कहंदन, चाहा शुद्ध के चूं बच्चे गां कुश्ताचार, के बाकी बमान दस्त पेची दामार, चे मर्दी के अहगर खमोशां कुनी, के आतिश दामारा फिरोजां कुनी। की होया के बलदे हुए भांबणा दे चों चार चिनगारियां बुझ गईयां, ए सब कुछ उना लई एक तमाशा। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान के प्रचलित गाथा ते ए है, और खास करके योगियां दे प्रचार दे च ए खास गल आई कि ए मादा ए माया जुगती नाल प्रसूत होई व्याई, और उस तो तीन प्रमाणिक चेलियां ने जन्म लिया, जिहदे च एक संसारी है, एक भंडारी है, और एक लय करण वाला है, एक परले करण वाला है। पर हकीकत की है, साहिब कहने, ज्यों तिस भावे तिवें चलावे, ज्यों होवे फुरमान। हकीकत यह है कि परमात्मा जिवें चाहुंदा है तिवें अपनी प्रकृति नूं चला रहा है, जिवें उसका हुक्म है तिवें ही जगत दे सब कुछ जो है हो रहा है। उस तो बिना होर कुछ नहीं, उस तो ही उत्पत्ति हो रही है, उस तो ही पालना हो रही है, उस तो ही नाश हो रहा है, क्योंकि उसका कोई मुद्दा नहीं, उसलिए सब कुछ तमाशा है, उस लई सब कुछ एक खेल है। एक मिथ है बड़ी सुंदर कि एक दफा शिवजी ने प्रार्थना की थी, हे अकाल पुरख कि तू मैनू जिहड़ी ये सेवा बख्शी है मौत दी, मैं जिस घर विच जाना रोना पिटना शुरू हो जाता है, ये मैनू चंगा नहीं लगता, ते मेरी सेवा बदल दित्ती जाए। जिहड़ा काम इंद्र नू सौंपिया गया है बरखा करन दा, ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸ਼ੰਕਰ ਬਰਖਾ ਕਰਨੀ ਤੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਕਰਨੀ ਤੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ। ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਹੱਟ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਰਖਾ ਇੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਬਹੁਤੇ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ हट करके परमात्मा ने यह सेवा झोली च पा दिती। अच्छा हुण आईंदा तो बरखा तू करेगा। शिवजी ने यह वर प्राप्त किया, जद मैं डमरू वजावा उदो ही बरखा होवे, उस तो पहले नहीं होनी चाहती। तथा उसतू कर दिता गया, ठीक है तू डमरू वजाएगा बरखा होवेगी। मात लोग देच आए शिवजी, मिथिहास किसान लोग हल चला रहे सन, तो शिवजी कहने लगे, सुनो हल ना चलाओ, क्यों? 13 साल तक मीह नहीं पैना, बरखा मेरे हथ च, लेके वर आया है

शेर ने मार किया ते मेरी नू ललकार किया तो लाने चोर हजार किया असी होड़ी कोलो डरदे नहीं असी पुत्र

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई ता दुखी है। जे औलाद है ता हुकम विच नहीं है ओ ता दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना ता मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए ता फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी ता है ही ऐसी।

0: संत का दुखी अदबीज ते टूटा
1: संत का दुखी कित काज न पहुंचा
0: संत के दुखी को उदयान परमाई है
1: संत का दुखी उजड़ पाई है
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा
1: सास बिना मृत की लोथा
0: संत के दुखी के जड़ किस नाही
1: अपन बीजा पे ही खाहे
0: संत के दुखी को अवर न रख नहार
1: नानक संत भगता लय उबार
0: संत का दुखी इं बिल लाए
1: ज्यो जल बिन हून मछली तड़फड़ाए
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजा
1: ज्यो भावक ईंधन नहीं त्रापे
0: संत का दुखी छुटा अकेला
1: ज्यो बुआर तिर खेत माहे दुहेला
0: संत का दुखी धर्म ते रहत
1: संत का दुखी सत मिथ्या कहत
0: कीर्तन दिक्का तुर ही पया
1: नानक ज्योत सुभावे सोई थिया
0: संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए
1: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए
0: संत का दुखी सदा सहकाई है
1: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइये
0: संत के दुखी की पूजा ना आसा
1: संत का दुखी उठ चले निराशा
0: संत के दुख न दृष्टि कोई
1: जैसा भावे तैसा कोई होए
0: पया कीर्तन मिटे कोई
1: नानक जाने सच्चा सोए
0: सब कर तिसकी हो करने हार
1: सदा सदा तिसको नमस्कार
0: राखी उसत करहो दिन रात
1: तिसे त्यागो सास गिरा
0: सब कछ वर्त तिसका किया
1: जैसा करे तैसा को थिया
0: अपना खेला करने हार
1: दूसर कौन कहे विचार
0: जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे
1: वडपा की नानक जन से श्लोक
0: तजो सियान पुसुर जन हो सिमरो हर हर राय
1: एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पौ जाए अष्टपदी
0: मनुख की टेक बिरथी सब जान
1: जीवन को एक है भगवान
0: जिसका दिया रह अगाए
1: और न कृष्णा ला गया
0: मारे रखे एको आप
1: मानक का कृष्णा ही हाथ
0: इसका हुक्म भू सुख होए
1: इसका नाम रख कंठ परोए
0: सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए
1: नानक बिघन न लागे कोए
0: उसत मन में कर निरंकार
1: कर मन मेरे सत व्यवहार
0: निर्मल रसना अमृत पियो
1: सदा सहेला कर ले जियो
0: नैनो बेग ठाकुर का रंग
1: सह संग बिन सह सब संग
0: चरण चलो मार्ग गोविंद
1: पाप जपिए हर बिंद
0: हर हर कर्म श्रवण हर कथा
1: आदर ज्ञान नानक उजल मथा
0: बड़ भागी ते जन जग माहे
1: सदा सदा हर के गुण गाहे
0: राम नाम जो करे विचार
1: चेतन मंतकनी संसार
0: मन तन मुख बोले हर मुखी
1: सदा सदा जानो ते सुखी
0: एको एक एक पछानै
1: तुत कियो सोजी जानै
0: नाम संग जिसका मन मानिया
1: नानक तने निरंजन जानिया
0: गुर प्रसाद अपने आप सुजै
1: जिसकी जानो तृष्णा बुझै
0: सात संग हर हर जस कहत
1: सर्व रोग त्यो हर जन रहत
0: धन दिन कीर्तन केवल बखयान
1: तमा सोई निर्वाण
0: एक ऊपर जिस जन की आशा
1: जिसकी कटिए जन की फसा
0: पार ब्रह्म की जिस मन भूख
1: नानक प्रसन्न लागे दुख
0: जिसको हर ब्रह्म मन चिते आवे
1: सो संत सोहेला नहीं दुलावे
0: जिस प्रभ अपना कृपा करे
1: सो सेवक को किसते डरे
0: जैसा सत ऐसा दृष्ट आया
1: अपने कार्य में आप समाया
0: सोधत सोधत सोधत सीजया
1: प्रसाद तत् सब बुझे
0: जब देखो तब सब शमूल
1: नानक सो सूक्ष्म सोई स्थूल
0: मैं किस जन मैंने किस मरे
1: अपने चलते आप ही करे
0: आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट
1: आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट
0: आपे आप सगल में आप
1: अनक जुग त्रच था व्यथा
0: अविनाशी ना ही किस खंड
1: धारण धार रहे ब्रह्मांड
0: लख पे पुरख प्रताप
1: आप जपाए तन नानक जाप
0: जिन प्रभ जाता सो सो बावंत
1: सगल संसार उदर तन मंत
0: प्रभ के सेवक सगल उदारण
1: प्रभ के सेवक दुख विसारण
0: आपे मेल लय कृपाल
1: गुर का शब्द जप भय निहाल
0: उनकी सेवा सो ही लागे
1: जिसनो कृपा करे बट भागे
0: नाम जपत पावे विश्राम
1: नानक तन पुरख को उत्तम कर मान
0: जो किस करे सो प्रभ के रंग
1: सदा सदा बसै हर संग
0: भाई हो वैसो होए
1: करने हार पछाने सोए
0: रब का किया जन मीठ लगाना
1: जैसा सत ऐसा दृष्टाना
0: जिसकी उपजे तिस माहे समाए
1: सुख निधान उन्हों बने।

0: ते संत भेटिया नानक मन परगास। अष्टपदी
1: संत संग अंतर प्रभ डीठा
0: ना प्रभु का लागा मीठा।
1: सगल समिग्री एक घट माहे
0: अनक रंग नाना दृष्टा है।
1: नौ नदी अमृत प्रभ का नाम
0: यही मैं इसका विश्राम।
1: सुन समाध अनहद तहनाद
0: कह न जाइए चरित विस्मार।
1: दिन देखा जिस आप दिखाए
0: नानक तिस दिन सो जी पाए।
1: सो अंतर सो बाहर अनंत
0: घट घट व्याप रहा भगवंत।
1: धर्म माहे आकाश पयाल
0: सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल।
1: अंतिम पर्वत है पार ब्रह्म
0: जैसी आज्ञा तैसा कर्म।
1: संतर माहे
0: चार कुंट दिशा समाहे
1: इसके भिन्न नहीं को ठाओ।
0: गुर प्रसाद नानक सुख पाओ
1: वेद पुराण सिमरत मैं देख।
0: सस्यर सूर न खतरे में एक
1: वाणी प्राप्ति सबको बोले।
0: आप डोल न कब हूँ डोले
1: सर्व कला कर खेल है खेल।
0: बोल न पाइये गुणे अमोल
1: सर्व ज्योत मैं जाकी ज्योत।
0: धार रहे हो स्वामी ओत पोत
1: गुर प्रसाद परम का नास।
0: नानक तिन में एको विश्वास
1: संत जना का देखन सर्व ब्रह्म।
0: संत जना के हृदय सब धर्म
1: संत जना सुने शुभ वचन।
0: सर्व व्यापी राम संग रचन
1: जिन जाता तिसकी यह रहत।
0: सत वचन साधु सब कहत
1: जो जो होए सोई सुख मान।
0: कर्ण करावन हार प्रभ जन
1: अंतर बसे बाहर पियो ही।
0: नानक दर्शन देख सब मोही
1: आप सत किया सब सत।
0: जिस प्रभ ते सगली उत्पत
1: इस भावे ता करे विसार।
0: इस भावे ता एक अंकार
1: अनक कला लखी नह जाए।
0: जिस भावे तिस लय मिलाए
1: कवन निकट कवन कही है दूर।
0: आपे आप प्रभुर
1: अंतर्गत जिस आप जनाए।
0: नानक तिस जन आप बुझाए
1: सर्व भूते आप वरतारा।
0: सर्व नैन आप खनहारा
1: सगल समग्री जा का तना
0: अपन जस आप ही सना।
1: आवन जाने खेल बनाया
0: आज्ञाकारी कीनी माया।
1: सब कह मत अलिप्त हो रहे
0: जो किस कहना सो आपे कहे।
1: आज्ञा आवे आज्ञा जाए
0: नानक जा पावे ता लय समाए।
1: इससे होए सुना ही बुरा
0: उरे कहो किने कछ करा।
1: आप भला करतूत आत्मी की
0: आपे जाने अपने जी की।
1: आप साज धारी सब साच
0: ओत पोते अपन संग राज।
1: आपकी गर्मित कही न जाए
0: दूसर होए ता सोजी पाए।
1: इसका किया सब प्रवान
0: गुर प्रसाद नानक हो जान।
1: जो जाने ते सदा सुख होए
0: आप मिलाए लय प्रभ सोए।
1: ओ धनवंत कुलवंत पतवंत
0: जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत।
1: धन धन धन जन आया
0: जिस प्रसाद सब जगत तराया।
1: जानिया मन का यह सुहाओ
0: जन के संगत आवे नाम।
1: आप मुक्त मुक्त करे संसार
0: नाम।

खड़ के तो मैं शरण तिहारी आप हाथ दे लेहो बारी सरबठार मोहो सहाय दुष्ट दुख ते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता श्री अस्तोजा पहे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वाशित फल पावे सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अडिल सुनया गुंग जो आहे सो रसना पावई सुनया मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाउ निकट नातन नर के रह हो जो याकी एक बार चाओ पई को कह चाओ पई संबत सत्रह सहस पणिज अर्ध सहस पुण तीन के हिज भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा तीरथ तद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाई गहे जब ते तो मरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कह हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कार मैं ना कहे ओ सब तो हे बखाने ओ दोहरा सगल दुआ

हो करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही कहर तेरा, घर ता तेरा सब किश है, जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी। नाम मन वसावे, नाम दिन कै मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सचे साहिब क्या नाही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा, जन भुखा सब गवाइया, कर सांत सुख मन आए वसिया, जन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विट्टा हो, जिस दी आए वडियाइया, कह नानक सुनो संता हो, साबत धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधार। वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै, कर सुभागै शब्द वाजे, कला जित कर धारिया, पंच दूर तुद वास कीते, काल कंटक मारिया, तुहर कर्म पाया, तुद जिन काओ से नाम हर कै लागे, कह नानक तह सुख होवा, तित कर अनहद वाजे। साची लेवै बेन देहन माणी, देहन माणी लेवै बज हो, क्या करे बेचारिया, तुद बाज समरथ कोए, नाही कृपा कर बनवारिया, एस नाओ होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया, कह नानक लेवै बज हो, क्या करे बेचारिया। आनंद आनंद सब को कह, आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते, कृपा करे प्यारिया, कर कृपा खिलवे कटे, ज्ञान अंजन सारिया, अंदरो जनका मोह टुटा, जनका शब्द सच्चा सवारिया।

एहो विस संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नजरी आया, गुर प्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर न कोई, कह नानके नेत्र अंध से, सतगुर मिले है, देव दृष्ट होई, ए श्रवण हो मेरे हो, साचै सुनने नू पठाए, साचै सुनने नू पठाए, शरीर लाए, सुनो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया होवा, रसना रस समाणी, सच अलख विडानी, ताकि गात कही ना जाए, कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवा, हो साच सुनने नो पठाए।

बोलना जी वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जी। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं।

प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास हुई सहाए अर्जन हर गोबिंद नू सिमराउ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए देख बहादुर सिमरी है घर नौन दयावे ताए सब थाई होए सहाए दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी पंथ दे वाली लोक परलोक के सहाय कमृत के दाते सच्चे पिता जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां जी दे जो ताकत चावर छत्र दे मालक सर्ब कला भरपूर जुगो जोगे अटल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन पाठ उपदेश जी का ध्यान करके खालसा जी बोलाओ जी पंजा प्यारियां चौहान साहिब जादियां चालियां मुगतियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख सुन कैंडट कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलाओ जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीह दिते बंद बंद कटाए खोपरियां नुहाईयां चढ़खड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुवासन संग निभाही तना प्रातन वर्तमान समय दे सरबत शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलाओ जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तरके खालसा जी बोलाओ जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रशियारे आए तो देग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलाओ जी बख्शो जी सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे युगो जोगे अटल धर्म का जय जयकार बोलो जी आप जी दे सिखां दा मन नीवा मत उची मत पर दे राखे आप वाहिगुरु जी हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार पिता जीओ श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारे गुरधाम जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है जी खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो जी हे नमाणियां दे माण नेताणियां दे तान न्योटियां दी ओट सच्चे पिता गरीब निवाज धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहिब जी धन धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज अकाल पुरख अंतरजामी सतगुरु जी आप जी ने अपार बख्शिश कीती है अमृत वेले की दात इशनान आप जी ने पावन तख्तां ते प्रकाशमान होके सरबत संगतां ताई खुले दर्शन दीदार बख्शिश कीते गरीब नवाज जी आप जी दा कुटान कोट शुकर शुकराना है जी आप जी के हजूर पावन चरणा कमना पास अमृत रूप नित नेम पंज बाणियां जी के पाठ जी दी अरदास बेनती अखर वाद काट भुल चुक दी माफी बख्शो अगे वास्ते सुमत सोझी बख्शो सुध स्पष्ट प्रेम पै भावना दे नाल गुरबाणी पढ़न सेवा सिमरन कथा कीर्तन करन दे बल उदम चाओ बख्शिश करो जी पढ़ी सुनी बाणी दर ते प्रमाण करनी जी पढ़ी सुनी बाणी दा भाव संगत दे हिरदयां विच वसाउणा संगतां दीआं हाजरियां भेटावां सेवावां दार ते प्रमाण करनिया चलिया होया कदम कदम लेखे विच लाउणा दरों करों समुचियां ही संगतां परिवारां बच्चियां नूं गुरसिखी दी दात नाम सेवा सिमरन चरणा कमलां दा प्रेम भरोसा बाणी बाणी नाल प्यार घर परिवारां विच सुख शांति चढ़दी कला तंदरुस्ती किरत कमाईयां दे विच बरकतां पाउणियां अपने खालसे पंथ जी नूं सदा ही चढ़दियां कलां परस्पर प्रेम प्यार एकता तफाक राज पा खालिस्तान दी दात बख्शिश करके पंथ कौम नूं निहाल करो
ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਰਹਾਈਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ ਦਾਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟਾ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਪਾਵਨ ਦੇਗ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੈਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ ਪਾਵਨ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਗ ਸਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦੇਗ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ ਪਾਸ ਬਾਣੀ ਪੜਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਬਖਸ਼ੋ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੋ ਕਾਰੀ ਪਾਕ ਸਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਵਹੁ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਇ ਆਪ ਜੀ ਭੋਗ ਲਾਓ ਲੱਗਿਆ ਭੋਗ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ ਸੁਭਾਏ ਮਨ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਤੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ ਮੁੱਖ ਵਾਗ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ ਸਹੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਤੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਪਹੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ

दंडावत बंदन अनेक बार सर्वकला समरथ डोलन ते राखह प्रभु नानक दे कर हाथ सुकाहो टल गोर सेविय अनस सहज सुभाए दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसमदी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद जिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी

0: पहले पहले के लिखे टुंडे सराज की तुनी श्लोक महला पहला। बलहारी गुरु अपने देवहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करतना लगी वार महला दूजा।
1: जे सोचन दा उगवे सूरज चढ़े हजार, इते चानन हुंदिया गुर बिन कोरे अंदार महला पहला। नान गुरु ना चेतनी मन

मुसलमानों सिफत सरियत पड़ पड़ करें बिचार। बंदे सिज पहुंच बंदी वेखण को दीदार, हिंदू साला साला अंदर सनु पपार। तीर्थ नावैर चा पूजा करवास बैकार, जोगी सुनती हवन जे तिलक नाम करता। सुखम मूर्त नाम रंजन काया काया कार, सत्याम संतो उपजे देने के विचार। दे दे मंगे सहसा गुण।

पड़पड़ के टेलत है पड़पड़ पर सात पड़पड़ बेड़ी पाई है पड़पड़ घड़ी है खाद पड़ी है जिते बरस बरस पड़ी है जिते मास पड़ी है जिते आर जा।

0: आपे पांडे साजना पे पूरण दे एक दूध समाये चूल्हे रहन चढ़े एक निहाली पैसवन कुप रहन खड़े तिना सवार नानका जिनको नदर करे महला दूजा आपे साजे.
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio te chal raha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib.

0: जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु महाराज साहब जी की साजी नवाजी। गुरु रूप खालसा साध संगत जी आप जी बड़भागे हो जो अमृत वेले तो लैके सतगुरां जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर हाजरियां भर के महाराज जी दे अमोघ दर्शन दीदार अमृत रूप गुरबाणी गुरमंत्र दे जाप उपरंत बहुत ही सत्कार योग भाई साहब भाई बलजीत सिंह जी यूके वाले उन्हां दे जथे दे पासों आसा जी दे वार दे कीर्तन सुन करके महान लाहा प्राप्त कीता है। सत्संग जी हुण बहुत ही सत्कार योग सिंह साहिब जी ज्ञानी वेल सिंह जी आप संगत नूं आए हुए मुख वाग दी कथा विचार द्वारा निहाल करनगे। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे पहले प्रकाश गुरपुरब अते ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी दे सलाना मिठी निगी सलाना बरसी नूं मुख रखदिआं होइआं कल गुरु घर विखे छे श्री अखंड पाठ साहब छे परिवारां वल्लों नगर निवासियां दे वल्लों सत्संग जी प्रारंभ होण जा रहे हन। ऐतवार भोग पाए जाणगे उपरंत सारा दिन जो विशेष तौर दे उपर दीवान सजणगे महाराज जी दे पहले प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित अते मौजूदा संघर्ष दे शहीद सिंघां नूं समर्पित वध तों वध हाजरियां भर के लाहे प्राप्त करने जी। आओ हुण कथा विचार दे नाल जुड़िए जी। वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरुख निरभाउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है पी सच

से नहीं है, हर जगह न, हर जगह न। वात्सायन कहते ने, मैं इस विषय से बोलांगा, इस वास्ते बोलांगा कि गन का अपन जो स्त्री दे तल ते पैदा होंदा है खत्म होवे, बलात्कारी तल जो पुरुष दे तल ते होंदा है खत्म होवे। सारी दुनिया विच वख-वख साजो समान दे बाजार ने, सब्जी मंडी है, लोहा मंडी है, क्लॉथ मार्केट आउंदी है, सारी दुनिया च स्त्रियां दे बाजार भी ने जिथे स्त्री दी असमत बिकदी आ, इज्जत बिकदी है सारी दुनिया च। इत मनुख है, इंसान है, पुरुष दा बलात्कारी होना, इस तरह दा स्त्री दा गनका हो जाना, ये दोहां दे तालमेल तो इस तरह दा होया है। आपदी ग्यातली अर्ज करां, दसम ग्रंथ विच एक भाग सतगुरु ने इसते लिखे है, गुरु गोबिंद सिंह ने, जिस दे उते बड़ा रोला पाया कईआं ने। गुरु गोबिंद सिंह ऐसा नहीं लिख सकते। मैं उन्हां नूं जवाब दिता, हिंदू जगत विच एक ऋषि लिखदा है, उन्हों ते वह ऋषि कहिंदे ने, संत कहिंदे ने, ते दसम ग्रंथ दे बोल पढ़ के थोड़ियां उंगलियां उठ जांदियां ने गुरु गोबिंद सिंह ते। इस दलील का कोई जवाब नहीं सी। विवाद चलता पे है, और जिन्हां जिन्हां ने लिखे है करीबन करीबन अकाल तख्त तो तनखाइया करार दिते गए। मैं फिर अर्ज करा, जे मोह ते बोलिया जा सकता है, लिखिया भी जा सकता है, मोह मनुख नूं भ्रष्ट कर देता है। मोह तो मुराद मेरा, यह सिर्फ मेरा है, इस वास्ते मैनू चंगा लगता है, मैनू अपना करूप बच्चा भी चंगा लगता है, पड़ोसी का सुंदर भी नहीं चंगा लगता, क्योंकि जो मेरा है उस नाल मोह है, जो पड़ोसी का उहदे नाल मेरा मोह नहीं। मैनू अपना औगणहारा बच्चा भी चंगा लगता है क्योंकि मोह है, पड़ोसी का गुणवान बच्चा भी चंगा नहीं लगता क्योंकि मोह मेरा, वह मेरा है ही नहीं। तो ये मोह भी बड़ा भ्रष्ट करता है। मेरा जो मेरा है ये उस नाल इंसाफ करता है, जो मेरा नहीं है उस नाल बेइंसाफी करता है, उस नाल इंसाफ नहीं करता। इस वास्ते मोह भी मनुख नूं भ्रष्ट करता है, हंकार भी मनुख नूं भ्रष्ट करता है, लोभ भी मनुख नूं भ्रष्ट करता है, काम भी मनुख नूं भ्रष्ट करता है, और क्रोध भी इतना कठोर मनुख नूं बना देता है, बड़े बड़े अनर्थ करवा देता है। मंडन मिश्र की पत्नी ने काम सूत्र की चर्चा छेड़ी और कह दिता शंकराचार्य नो, या ते कहो चार ही विषय ने, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, पंजवा है ही नहीं, ते जे पंजवा है तो मैं इहदे नाल इहदी थोड़े नाल चर्चा करनी है। वह बेचारा बाल ब्रह्मचारी शंकराचार्य, काम दियां बारीकियां दा उसनू बोध नहीं सी, काम असीम हो सके अभ्यास कर करके उस सारी बिरति नूं राम दा रस बना चुकिया सी, समाधि लीन सी पुरुष। काम सीमा तो वध होवे ये उसकी जिंदगी च हो नहीं सकता सी, और काम दा रूप बदल गया सी, काम राम दे च बदल गया, काम रस राम रस बन गया, नाम रस बन गया। ये भी किसी वक्त मैं थोड़े सामने खोलांगा। तो इसनु कोई अनुभव नहीं सी। तो मंडन मिश्र दी पत्नी कहन लगी, या ते हार कबूल करो, अपने ग्रंथ मेरे हवाले करो, या जिहड़े सूत्र मैं रखे ने इहदा खुलासा करो, जवाब देओ। पता है शंकराचार्य ने हाथ जोड़ के आखे, मैनू घट तो घट चार महीने की मोहलत दे दे, चार महीने बाद फिर चर्चा करांगे। तू मंडन मिश्र की पत्नी है, एक महान विद्वान दी, इतना मौका मैनू दे। एक स्त्री दे अगों वक्त दा ओ पुरुष जिहदे नाल लकब जुड़िया है जगत गुरु शंकराचार्य,
ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਸ ਨੇ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ

बंदे चुखाड़ के रख देते हैं। वो पुरुष जो महान विद्वान सी जिसने चार मठ बनाए ने, जिथों हिंदू धर्म बारे फैसला आंदा है, शायद आपनों पता होवे जद इंदिरा गांधी जगन्नाथ पुरी दर्शन करने वास्ते गई, पुजारियां ने रोक दिता, तेरा पति फिरोज खान सी, इस मंदिर दे केवल जैन बौद्ध सिख ते हिंदू जा सकते हैं, पुजारियां ने रोक दिता। ये पेपर सी टीवी थे, बच्चे बच्चे दी जबान थे उस वक्त चढ़ी गल। इंदिरा कहन लगी तुसी धर्म दे मुखी नहीं हो, चार मठा तो पहले फैसला कराओ मैं जा सकती हाँ कि नहीं जा सकती। उन्हां चार मठा दे जो बैठे हुए ने मुखी उन्हां नूं शंकराचार्य कहा जाता है अज दे, क्योंकि शंकराचार्य दी गद्दी ते बैठे ने, चार मठ उन्होंने बनाए सन। जिमें तख्त अकाल तख्त धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने बनाया, उत्थों दे सिरमौर नूं अकाल तख्त का जथेदार कहिंदे ने, वह चार जिहड़े मठ ने उन्हां दे मुखिया नूं अज भी जगत गुरु शंकराचार्य कहिंदे ने। अज भी चारां ने फैसला दे दिता, वैसे एक का फैसला भी काबिले कबूल होंदा है, चारां ने फैसला दे दिता नहीं जा सकते, खाली हथ वापस आना पिया, शायद आपको पता हो मंदिर दे च नहीं जा सके, शंकराचार्य का हुक्म किंतु परंतु करने की कोई गल ही नहीं, किसी हिंदू ने किंतु परंतु नहीं की थी।

0: तेजे सब्जी फल खाना है, फ्रूटी कहने जाना है, फ्रूटी कहने जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण @604581 1900।

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
0: जा कॉल किरण @604581 1900।

0: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है, 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ रही है, 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी
1: है।

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट

0: टेस्टी जी सब्जी भले खाना है,
1: फ्रूटी क्या नहीं जाना है,
0: फ्रूटी क्या नहीं जाना है,
2: फ्रूटी क्या नहीं जाना।
3: फैमिली केयर फार्मेसी
4: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
3: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
4: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
3: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
4: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लेंदे हन।
5: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
3: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
6: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gerdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gerdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GerdaleBaudGroup.com.

0: किस्ते जे सब्जी भले खाना है
1: फ्रूटी क्या नहीं जाना है
0: फ्रूटी क्या नहीं जाना है
2: फ्रूटी क्या नहीं जाना
3: जिंदगी दा हिसाब किताब वांग बिजनेस दा हिसाब किताब भी बहुत औखा है। पहला मेनू भी यही लगदा सी, पर जदों मेनू बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां बारे पता लगा, ओदो तो मैं टेंशन फ्री हो गया। जिन्हां नूं है 30 साल तो भी वध दा तजुर्बा। टैक्स पेपर फिल करने होन, बुक कीपिंग होवे या किसी भी तरह दा फॉर्म भरवाना होवे, तां अज ही संपर्क करो बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां नूं। कॉल 604-325-8370 604-325-8370।
4: तुहाडा घर, तुहाडी सब तो वड्डी इन्वेस्टमेंट, तुहाडा सब तो वड्डा एसेट हुंदा है।
5: इसनु खरीदन जा वेचन ले तुहानु चाहिदा है एक अजेहा रियल्टर जो तुहाडे लिए काम करे, जिस ते तुसी भरोसा कर सको, जो तजर्बेकार होवे। अजेहे ही एक रियल्टर हन गुरदयाल सिंह बाद, जो अपने 35 सालां तो वड्डे तजर्बे नाल रीमैक्स दे टॉप प्रोड्यूसिंग रियल्टर्स विच शामिल हन।
4: मार्केट दी पूरी समझ अते तुहाडे भरोसे ते पूरे उतरनगे गुरदयाल सिंह बाद।
5: सो हर तरह दी रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, फॉर्म अते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी संबंधी सही सलाह ले अज ही गुरदयाल सिंह बाद नु
4: 604-351-5111 ते कॉल करो 604-3